एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 जून सन 2026। इस समय सुबह के 8:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:59 हुए हैं। प्रस्तुत है शुभ विचार। महात्मा गांधी ने कहा है, अनुभव एक महान शिक्षक है, इसीलिए गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीख लें। अभी आप सुन रहे थे शुभ विचार। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा

का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा, नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन के 1,491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6,000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म, मृत्यु और विवाह

0: जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारे छूट दिए हैं।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3,00,000 से अधिक किसानों से 25,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News

0: न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारां के शाहबाद कस्बे में कल 2 घंटे तक बरसात हुई। नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। वना देवी, आकाशवाणी समाचार, हम।
0: मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है। वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने MSP पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं सुने विशेष सूचना। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। इसके लिए प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, पालोमी की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गाने और कुछ जानकारियां भी देते हैं। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी ही होगी कि देश के पहले शूटिंग सुपरस्टार, दिग्गज शूटर और कोच जसपाल राणा ने पिछले दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण पदक सहित 23 पदक जीते थे। उत्तराखंड के टिहरी के चिलामू गांव में जन्मे यशपाल ने 12 बरस की अवस्था में ही पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महज 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया से वे चले गए। वे एक सवाल छोड़ गए कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं के दिल इतने कमजोर हो रहे हैं। क्या 49 साल उम्र होती है इस दुनिया से विदा होने की? अब तो लोगों की उम्र लंबी हो रही है। सवाल यह है कि युवाओं को दिल की बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्या उनके खान पान में गड़बड़ी है? क्या उनके कामकाज का तरीका सही नहीं है? क्या वे जरूरत से ज्यादा तनाव ले रहे हैं? क्या वे तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं? क्या उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है? आइए आज इन सवालों के हम जवाब खोजें और ध्यान रखें युवाओं के स्वास्थ्य का। आपके घर में जो बच्चे हैं, युवा हैं, देखें कि उनका खान पान कैसा है, उनकी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल है, कहीं फास्ट फूड का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहे। सुनते हैं ये गाना, फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल हैं, विशाल मिश्रा का संगीत है।

0: हक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आकाश ओझा की आवाज में कौशल किशोर के बोल थे, विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का, पलोमी की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य जवानी जो

0: लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
3: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
3: ओ
2: जैसे यूपीआई से।
3: अच्छा
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी यूपीआई से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
1: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से

0: बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं सुनिए विशेष सूचना। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं एक बार फिर से रुक करते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम का।
1: के फनकार

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजा

फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयन चिशाड़ा, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवद की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनिया भी

बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

0: वसंत देसाई अत्युच्च कोटि के संगीतकार थे। पौराणिक और पारंपरिक फिल्मों का उनका संगीत अमर है।
1: तनन, तनन, तनन।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए। ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए विशेष सूचना। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है योग शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम योगवाणी का 9वां भाग। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वैद्य लवकुश पाराशर से वार्ता। वार्ता का विषय है योग से शरीर क्रिया विज्ञान।
1: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ योगवाणी।

0: योगवाणी की आज की इस कड़ी में हम जानते हैं हमारा शरीर क्रिया विज्ञान कैसा है और योग से शरीर क्रिया विज्ञान किस तरह से सही होता है। सबसे पहले जानते हैं हमारा शरीर क्रिया विज्ञान कैसा है। आज के हमारे योग शिक्षक हैं वैद्य लवकुश जी पाराशर।
1: हमारा शरीर एक जैविक मशीन की भांति है। मशीन जिस तरह से कार्य करती है उसी प्रकार यह भी कार्य करता है। जैविकता इसको विशिष्टता प्रदान करती है। इस विशेषता के कारण यह स्वयं अपनी सभी क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करता है। वैसे तो शरीर का क्रिया विज्ञान बहुत ही जटिल है। इसमें प्रतिपल असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं जिसका संपूर्ण विवेचन लगभग असंभव है। किंतु योग की दृष्टि से अगर शरीर क्रिया विज्ञान को देखें तो शरीर की सभी क्रियाओं का सार ऊर्जा निर्माण है। शरीर की सभी गतिविधियां एक जैविक ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होती हैं, जिसे आधुनिक खोज के द्वारा भी पहचान लिया गया है और इसकी इकाई एटीपी के रूप में अब जानी जाती है। शरीर को जो भोजन दिया जाता है उसके पाचन से उस जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा शरीर के निर्माण व संचालन दोनों के लिए आवश्यक है। हम निसंकोच यह कह सकते हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान इस जैविक ऊर्जा निर्माण के लिए ही कार्य करता है। यदि इस जैविक ऊर्जा का पर्याप्त रूप में संतुलन बना रहता है तो यह शरीर सदैव निरोग बना रह सकता है।
0: अभी हमने जाना हमारा शरीर क्रिया विज्ञान कैसा है। अब जानते हैं योग से हमारा शरीर क्रिया विज्ञान किस तरह सही होता है। आज के हमारे योग प्रशिक्षक से।
1: जैविक ऊर्जा का संतुलन अगर बना रहता है तो यह शरीर स्वस्थ रहेगा। जब इस जैविक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। संतुलन से यहाँ तात्पर्य है ऊर्जा के उत्पादन और व्यय के मध्य समन्वय। अब अगर हम शरीर में होने वाली प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं को ठीक करने लगें तो ये ऐसा होगा जैसे हम एक पेड़ की एक एक पत्ती को पानी दें। योग की दृष्टि मूल पर है। यदि हम संपूर्ण शरीर को खंडों में न बांटकर अपितु संपूर्ण रूप से अक्षुण माने और उसके जैविक ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखें तो ज़्यादा प्रभावशाली तरीका होगा स्वास्थ्य का। आधुनिक काल में चिकित्सा विज्ञान के द्वारा स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी गई है वह बहुत ही सतही है। उस परिभाषा के अनुसार रोगों का न होना ही स्वास्थ्य है, जबकि योग की दृष्टि ज्यादा गहरी है। योग के अनुसार जब तक हमारी चित्त वृत्तियां संपूर्ण रूप से निरोध को उपलब्ध नहीं हो जाती हैं तब तक हम स्वस्थ नहीं हैं। स्वयं में स्थित हो जाना ही वास्तविक स्वास्थ्य है और यह पूर्णतः संपन्न होता है योग की क्रियाओं द्वारा। शरीर की ऊर्जा का संतुलन प्राप्त होने लगता है, ऊर्जा की खपत में कमी आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। यही आवश्यक है हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए।
0: योगवाणी की आज की

घड़ी में हमने जाना हमारा शरीर क्रिया विज्ञान कैसा है और योग से हमारा शरीर क्रिया विज्ञान किस तरह से सही होता है। आज के हमारे योग शिक्षक थे वैद्य लवकुश जी पाराशर। योग से जुड़ी नई जानकारी लेकर कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे योग शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम योग वाणी का नवा भाग। इसके अंतर्गत वार्ता वैद्य लवकुश पाराशर से आपने सुनी योग से शरीर क्रिया विज्ञान विषय पर।

0: है तार टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत में कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है जिस देश में गंगा रहता है। प्रस्तुत करता है दीपक मेहता।

102.9 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, मेरा चैनल, मैं हूं दीपक। प्रोग्राम है एक ही फिल्म से, और आज के इस प्रोग्राम में जिस फिल्म पर थोड़ी थोड़ी बातें और जिस फिल्म के गाने आप तक पहुंचेंगे, ये बड़ी खूबसूरत फिल्म है। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा रहता है।

जिस देश में गंगा रहता है, सन 2000 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म, महेश मांजरेकर ने निर्देशन किया और फिल्म को बनाने वाले जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ। यह फिल्म 1972 की मराठी एक दा जीव सदा शिव और 1974 की कन्नड़ फिल्म बांगर दा पंजारा की रिमेक है।

फिल्म की कहानी कुछ यूं कि गंगाराम उर्फ गंगा यानी कि गोविंदा अपनी माँ पिता और प्रेमिका बचपन की दोस्त सावनी सोनाली बेंद्रे के साथ एक ग्रामीण गांव में सादा जीवन व्यतीत करता है। जब गंगा की शादी का समय आता है तो उसके माता पिता उसे बताते हैं कि उसके असली माता पिता शहर में रहते हैं और वे चाहते हैं कि वो भी वहीं पर बस जाए। गंगा नम आंखों से गांव वालों से विदाई लेता है और अपने जन्मदाता माता पिता के शहर के लिए निकल पड़ता है। जल्दी यह खबर फैल जाती है कि गंगा एक योग्य कुंवारा है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह एक सोशलाइट टीना से शादी करे। गंगा अपने नए परिवार की सभी बातें मान लेता है, लेकिन हालात बिगड़ने लगते हैं और वह अपने असली माता पिता का घर छोड़कर भाग जाता है। उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई को एक महिला और दो गुंडे ब्लैकमेल कर रहे हैं। गंगा अपने भाई को बचा लेता है, लेकिन एक गुंडा उसके सबसे अच्छे दोस्त को चाकू मार देता है और गंगा पर चाकू मारने का आरोप लग जाता है।

गंगा अदालत में घटना के बारे में सच बोलने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करना चाहता। हालांकि उसकी भाभी अदालत में गंगा की बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाती है। फैसले के बाद गंगा और उसका सबसे अच्छा दोस्त अपने गांव लौट जाते हैं और वहां गंगा की मुलाकात सावनी से फिर होती है और उसके माता पिता उसकी शादी की अनुमति दे देते हैं। ये खूबसूरत कहानी फिल्म जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म की।

शिवाजी सातम, रीमा लागू, शक्ति कपूर, हिमानी शिवपुरी और किशोर नंदनकर ये इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे, जिन्होंने बड़ी प्यारी भूमिकाएं निभाई बेहतरीन रूप से और इस फिल्म को हिट किया। फिल्म जिस देश में गंगा रहता है।

फिल्म जिस देश में गंगा रहता है, फिल्म के गाने बड़े पसंद किए गए। संगीत आनंद राज आनंद का रहा और गाने लिखे देव कोहली और प्रवीण भारद्वाज ने। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देने वाले कलाकार रहे उदित नारायण, श्रद्धा पंडित, सुखविंदर सिंह, साधना सरगम, अनुराधा श्रीराम, अभिजीत, अतुल काले, सपना अवस्थी, बाली ब्रह्मपट्ट और सुनिधि चौहान।

ये थी आज की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ, ठीक है? तब तक के लिए दीपक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म जिस देश में गंगा रहता है, प्रस्तुत करता थे दीपक मेहता। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 MHz पर। प्रस्तुत है बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वागत है सखियों आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं आपकी कार्यक्रम हमसफर गुणवंती व्यास। सबसे पहले स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का दिन विशेष के साथ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मना रहे हैं। रंगहीनता से पीड़ित लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। सखियों इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद इसे पहली बार 13 जून सन 2015 में पहली बार मनाया गया थीम के साथ। तब से प्रतिवर्ष इसे एक नई थीम के साथ मनाया जाता है और सन 2026 की थीम है अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा के रंगों का उत्सव। रंग भेद नीति का विरोध, बाहरी रूप से परे पहचान, अपनी त्वचा पर आत्मसम्मान और गर्व होना, वही रंग की विविधताओं का जश्न मनाना। मैं काला हूँ वो गोरा है, यह सोचकर कुंठित ना हो और ना ही हम रंगों को लेकर शर्मिंदा हो और ना ही कोई किसी के काले गोरे रंग को लेकर अपमानित करें। रंग भेद नीति को मिटाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है।

सखियों, हमारे जीवन में कई उमंगें जवां होती है, कई सपने जागते हैं। जीवन जीने का अपना एक अलग मज़ा है, क्योंकि शौक हमारे जीवन का हिस्सा है। अपने शौक पूरे करने के लिए हम दिल से जुड़ जाते हैं, लेकिन शौक ऐसे हो जो जीवन में रंग भर दें। जिज्ञासा, कला और प्रकृति से जुड़े शौक उदासी और निरस्ता को दूर कर जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशियों का रंग भर देते हैं। पेंटिंग, गार्डनिंग, संगीत, फोटोग्राफी या लेखन जैसे रचनात्मक गतिविधियां न केवल तनाव कम करती है, अपितु मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करती है। हमारे बीच कई ऐसी शख्सियतें भी रही है जो अपने शौक के चलते बड़ी सफलताएं हासिल की है। इस जज्बे के कारण ही लोग अभिनय, संगीत, चित्रकला, खेल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में चमकते सितारे बने। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बचपन से ही पहेलियां सुलझाने का उन्हें इतना शौक था कि वे आगे चलकर सैद्धांतिक भौतिकी के पर्याय बन गए। वहीं बचपन से क्रिकेट खेलने के शौक के चलते सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटरों में शामिल है। वैसे ही मदर टेरेसा, संगीतकार नौशाद, गीतकार साहिल लुधियानवी, गायक मोहम्मद रफ़ी, ऐसी कई हस्तियां हैं जो अपने शौक के चलते ही सितारा बनी। इसीलिए सखियों, हमें अपने शौक को दबाना नहीं है और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। इन्हीं की बदौलत इंद्रधनुष से सतरंगी रंगों से हमारा जीवन महकता है।

0: द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आज महिला विशेष में याद करते हैं तीरंदाज दीपिका कुमारी महतो और कवियत्री कीर्ति चौधरी को। 13 जून 1994 को झारखंड रांची में जन्मी दीपिका बचपन से ही निशानेबाजी का शौक रखती थी। वो बांस के तीर धनुष बनाकर निशाने लगाया करती थी। आगे चलकर उन्हें अपनी चचेरी बहन की मदद से सही राह मिली, जो उस वक्त तीरंदाज की ट्रेनिंग

0: ट्रेनिंग ले रही थी। दीपिका ने भी तीरंदाज की ट्रेनिंग से अपनी प्रतिभा को निखारा और सन 2009 में पहली बार कैडेट विश्व चैंपियनशिप जीती। 2009 में ही अमेरिका में ऑगडेन में 11वीं युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप भी जीती। सखियों, 2010 में उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आया जब व्यक्तिगत रिकर्व और महिलाओं की रिकर्व टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक और इसके ठीक 2 महीने बाद नवंबर में 2010 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता। लंदन में 2012 के ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने हिस्सा लिया। दीपिका कुमारी हमारे देश का खेल की दुनिया का नायाब सितारा बनी, जिन्हें सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सखियों, आज हम साहित्य जगत से ताल्लुक रखने वाली साहित्यकार कवि यत्री कीर्ति चौधरी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद करते हैं। 1 जनवरी 1934 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नईमपुर गांव में जन्मी कीर्ति बाला सिन्हा को साहित्य विरासत में मिला। उनकी माता सुमित्रा कुमारी हिंदी की एक प्रसिद्ध कवियत्री और गीतकार थी। सो कीर्ति चौधरी ने एमए कानपुर से और यू उपन्यास में कथानक तत्व का शोध कार्य भी किया, साथ साथ लेखन कार्य में भी इनकी रुचि रही तो लेखन कार्य भी चलता रहा, जिसके चलते प्यार करो, आगत का स्वागत, वे कैसे दिन थे, खंडहर का पौधा और उनकी प्रसिद्ध कविता सीमा रेखा शामिल रही। सखियों, कीर्ति चौधरी की इनमें गांव, कस्बे और शहर का सारा जीवन का समावेश होता था इनके लेखन में। हिंदी साहित्य जगत में इनकी कविताएं मील का पत्थर मानी जाती है। इनकी कविता का आकाशवाणी से कई बार कई दशकों तक प्रसारण भी हुआ तो कीर्ति चौधरी की कई पत्रिकाओं के संपादन से भी ये जुड़ी रही। सन 1960 के तीसरे सप्तक के 7 कवियों में यह शामिल रही। सखियों, इस कवियत्री ने 13 जून 2008 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम इन्हें शत शत नमन करते हैं।
1: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ 102.9 FM मेरा चैनल के प्रसारणों को अब आप मोबाइल ऐप के जरिए कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, फिर जाइए लाइव रेडियो पर। रेडियो के बहुत सारे चैनल, उनमें से आप सेलेक्ट कीजिए अपना पसंदीदा आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ चैनल को और फिर मस्जिद सुनिए हमारे पंचरंगी प्रसारणों को कहीं भी कभी भी।

इन कोई नया ट्यून कर ले जरा। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले सुनिए विशेष सूचना। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर हैं 1800-315 और 7008 पर मिस्ड कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। इसके लिए प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं महिला जगत के कार्यक्रम के इस अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम बात कर रहे हैं मायके और ससुराल में हम किस तरह से सामंजस्य बिठाएं। और सामंजस्यता बिठाना ज़रूरी है, दोनों का संतुलन होना ज़रूरी है, तभी बहू सुखी रह सकती है और बेटी भी सुखी रह सकती है। सखियों, हम देखते हैं

कि कहीं मायके वालों की बेटी के ससुराल वालों से नहीं बनती है, तो कहीं बेटी के ससुराल वाले बहू के माता पिता को कोसते रहते हैं या उन्हें याद भी नहीं करते हैं। ऐसे में हम क्या करें, हमारी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है। ससुराल वालों की तरफदारी करें तो मायके वाले खपा, और मायके वालों का साइड ले लो तो ससुराल वाला नाराज़ हो जाते हैं। इसका असर सीधा हमारे दिल दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है, हमारे बच्चों पर भी इसका दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। ऐसे में हमें ठंडे दिमाग से सोचकर मायके वालों और ससुराल वालों में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी बनता है, ताकि दोनों परिवारों के प्यार, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण माहौल बने। वहीं बच्चों को ननिहाल और ददिहाल दोनों तरफ का प्यार और संस्कार मिले। कभी कोई संकट आ पड़े तो दोनों परिवार साथ होकर समाधान ढूंढे। ऐसा करके हम अपने जीवन में भी शांतिपूर्ण माहौल बना सकती हैं और अपने जीवन को खुशहाल रख सकती हैं।

आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से प्रसारित अभी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे महिला जगत एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

पांच बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, कोई

ग्रेट फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद रफी।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: ये सुनिए, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्मयुग से ही शुरू करते हैं।
0: क्या बात है, क्या तो, मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्मयुग
1: तो
0: क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
0: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्मयुग कायम है।

0: जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूं और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा,
1: वाह,
0: मुबारक का खत लिखा और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो
1: जी
0: तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना।
1: क्या बात,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ।
1: जी जी,
0: कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की।
1: क्या बात है, वाह।
0: कहता था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी
1: वाह
0: दूर उफक में डूब गया,
1: गया,
0: रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की।
1: क्या बात है साहब, क्या बात।
0: तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है
1: जी,
0: लेकिन कहानी का जो मकसद है
1: जी जी
0: वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है, वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी।
1: क्या बात है।

0: करने पर हूँ।
1: जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के, यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
2: क्या बात।
1: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
2: वाह क्या बात है। ये सुबीर सेन की आवाज है,
1: सुबीर सेन
2: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

भाई आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी, और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज़्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के खजाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर इंटरव्यू लेकर आया हूँ। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
1: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिए गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए, इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ तो पूछूं?
3: छोटे जी, मैं जानता हूँ कि इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा।
3: हाँ,
2: है? अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी, बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ।
2: हाँ।
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
2: हाँ, हो जाता है, हो जाता है।
3: जैसे
2: तो आप तो जानबूझ करके आए,
3: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे। हाँ। तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, गायक बन गया।
2: गायक बन गया,
3: ऐसा होता है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
2: अच्छा।
3: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं, ये कोई तमन्ना नहीं थी।
2: अच्छा।
3: साहित्य में जगह बनाना चाहता था।

0: ठीक।
1: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था, कविता लिखता था, शायरी करता था, अफसाने भी लिखे।
0: वाह।
1: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था,
0: ठीक,
1: जिसकी जगह कम होने लगी। और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था, आखिर सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
0: जी।
1: तो उस हल्के में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी, कलम हमने कान पे रखी है, हमसे भी कुछ लिखवा लो।
0: हाँ ठीक।
1: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए।
0: अच्छा।
1: बिमलदा से आप शायद नाम सुना के हो।
0: स्वर्गीय बिमलदा है।
1: जी हाँ।
0: अच्छा।
1: उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे। और उनसे मिले, वहां पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
0: कौन सा गाना?
1: बंदनी में मोरा गोरा अंग ले ले।
0: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
1: अब छोड़िए, क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में, इसी गाने से परिचय हुआ था। और वो गाना लिखा, और उन्हीं दिनों बिमलदा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला।
0: जी।
1: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें,
0: जी,
1: लगा कि ये कुछ भूखा है।
0: जी।
1: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल? मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है?
0: जी।
1: तो भाई जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहाँ दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
0: सही बात, सही बात।
1: तो तुमने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ।
0: जी।
1: और बड़ा अच्छा मौका था,
0: तो
1: जाहिर है हो गया,
0: पहुंच गए, हो गया।
1: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
0: जी
1: कि लेखक की जगह अपनी है।
0: हाँ।
1: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं।
0: अच्छा।
1: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में,
0: हाँ,
1: वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगा।
0: अच्छा। हाँ, तो फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा।
1: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा,
0: सही बात,
1: और तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
0: ठीक ठीक।
1: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है,
0: हाँ,
1: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
0: मतलब फिर आपने निर्देशन भी।
1: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने सीखना शुरू किया और लिखते रहे साथ में।
0: लिखते तो आप अब भी हैं और लिखते रहेंगे आप।
1: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
0: अच्छा। तो देखिए, इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना।
1: जा,
0: तो अब आप तो दोनों हैं, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान?
1: जी हाँ, दोनों शख्सियतें।
0: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ?
1: जी,
0: लेखक और निर्देशक।
1: वैसे छोटे जी, आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में।
0: अरे आप ही लोगों से साथ बैठ के
1: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
0: होता है ना।
1: जी हाँ।
0: अच्छा।
1: और अक्सर ये हुआ है कि जो लेखक है ना मुझमें,
0: जी,
1: वो पकड़ लेता है, इसलिए। जी हाँ।
0: अच्छा।
1: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है।
0: हाँ,
1: जो बात आप कह रहे हैं, जो ख्याल कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: अब आप शॉट चाहे किसी तरह से भी ले लीजिए, कोई भी चालाकी कीजिए, कैमरा कहीं भी रख के आप बहला तो लेंगे देखने वालों को, लेकिन वो बात बहुत जरूरी है और वहां पे आके पकड़ लेता है वो लेखक।
0: अच्छा।
1: और उसका बड़ा फायदा है कि जो बात कहनी है उसमें एक मकसद और मतलब होना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा। तो गुलजार भाई, अब साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि फिल्मों में आने के बाद जब आप लेखक और निर्देशक बन गए, तो फिर आपको ये दुनिया मतलब अब कैसी लगती है? जो पहले आपने सोच रखी थी ऐसी है या कुछ अंतर?
1: वैसे दुनिया बड़ी दिलचस्प है, बहुत अच्छी है।
0: अच्छा।
1: और रंगारंग है।
0: हाँ।
1: और अंग्रेजी में।
0: अच्छा।
1: फैसिनेटिंग है।
0: हाँ भाई,
1: बहुत फैसिनेटिंग।
0: अच्छा।
1: और इसलिए कि एक चीज कहने के लिए, कविता तो मैंने कागज और कलम ली और ख्याल को उस पर कलम बंद कर लिया।
0: जी।
1: लेकिन फिल्म के लिए जो ख्याल मैं कहना चाहता हूं और फिल्म में सेलुलाइट पर उसे डालना चाहता हूं, उसके लिए मैं अकेला नहीं हूं।
0: अच्छा।
1: और उसके लिए मुझे एक पूरी टीम बनानी पड़ती है।
0: हाँ।
1: जाहिर है उसमें कैमरामैन भी है, एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, और दूसरे कर्मचारी टेक्नीशियन है, जितने
0: सभी उसमें शामिल।
1: और वो सारे जब तक आकर एक सुर पे न मिले और एक सम पे धा ना पड़े तो वो बात बनती नहीं,
0: बात नहीं बनेगी।
1: तो वो एक धा मारने के लिए वो सात आदमियों को जुड़ना पड़ता है और सातों की उंगली वहीं पे आगे पड़नी चाहिए, तब बात बनती।
0: सही बात है, सही बात है।
1: इसलिए वो बहुत फैसिनेटिंग है।
0: सही बात।
1: क्योंकि एक

0: काम करने के लिए फिर मुझे वो दूसरे का मीडियम समझना पड़ता है, उसमें मुश्किलात समझनी पड़ती हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की क्या है, कैमरामैन की क्या है, आर्ट डायरेक्टर की क्या है, तो ये तमाम जब दूसरे मीडियम मिल जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये बहुत से फाइन आर्ट्स सारे के सारे जो हैं वो फिल्म में एक में
1: जुड़े हुए हैं। अच्छा गुलजार भाई, एक चीज आपसे ये भी पूछनी है कि जब से बहुत ज्यादा मारधाड़, खून खराबा और अश्लीलता यानी सेक्स पर पाबंदी लगाई गई है, तब से ये बात जो है वो फिल्म देखने और बनाने वालों में चर्चा का विषय बन गई है ना,
0: बहुत चर्चा।
1: तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
0: इसके विचार दो तरह से हैं।
1: पहली तरह
0: ये है कि हमारी कुछ नौकरी जो है ज्यादा महफूज हो गई है, खासतौर पर जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ।
1: अच्छा,
0: तो या जाहिर है कि अगर वो सेक्स और वायलेंस के ऊपर पाबंदी पड़ेगी तो कुछ नौकरी मुझे और मिल जाएगी, मुझे
1: अच्छा,
0: ज्यादा साफ सुथरी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए, वही लेखक का ख्याल
1: जी,
0: कि भाई ये है क्या ये जो वायलेंस है, तो सच पूछिए वेस्ट की फिल्मों का बहुत असर है हम पे।
1: अच्छा,
0: और वो प्रोपोगेट करते रहे हम।
1: अच्छा,
0: और वो दिखा दिखा के ये वायलेंस से एक झूठा जोश पैदा करके वो ऑडियंस को कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए उन्हें बस वो मुक्त कर दो, उसमें मदहोश कर दो और निकल
1: अच्छा,
0: जाओ।
1: ये चीज,
0: लेकिन उसके असर जो हैं वो बहुत बुरे हैं।
1: अच्छा, वो दूसरी बात हुई।
0: और जो चर्चा है वो यही है कि साहब उस पर पाबंदी लग रही है, और वो पाबंदी लगने से जितनी सफाई हो रही है, अगर ये हो गई इसी तरह से
1: जी,
0: तो मेरा ख्याल है कहीं ये सोचना पड़ेगा
1: जी,
0: कि जिस जो जिंदगी हम जीते हैं
1: जी,
0: क्या उसमें लिखा जा सकता है, क्या उसके बारे में फिल्में भी बनाई जा सकती हैं कि
1: वाह
0: नहीं,
1: वाह वाह वाह,
0: जो हर फन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: वाह,
0: क्योंकि जब तक कोई फन जिंदगी में से निकल के नहीं आएगा
1: जी
0: वो बनावटी रहेगा।
1: हाँ ठीक
0: और
1: ठीक
0: ये इस तरह की फिल्में नहायत बनावटी लगती हैं, जिस तरह के डेंस, पता नहीं मुझे तो तजर्बा नहीं, शायद किसी को हो,
1: जी
0: जो डेंस और वो स्मगलर्स के डेंस लगते हैं और
1: हाँ,
0: जो देखते हैं फिल्मों में,
1: जी
0: मैंने अभी तक हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं देखे, शायद
1: अच्छा,
0: हों कहीं मेरी नजर से नहीं गुजरा।
1: अच्छा, तो आपके विचार से सेंसर की ये पाबंदी फिल्मों के हक में कैसी रहेगी?
0: जी, फिल्मों के हक में भी अच्छी और मेरे हक में भी अच्छी है, आज से आज की मेरी नौकरी अच्छी पक्की हो जाएगी।
1: अच्छा गुलजार भाई, आपने तो विदेशों में भी कई फिल्में मेले देखे हैं, अभी पिछले दिनों आप ताशकंद भी गए थे, तो वहाँ यानी दूसरे मुल्कों में भारतीय फिल्मों को कैसा समझा जाता है, यानी हमारी फिल्मों के बारे में वहाँ के लोगों के क्या विचार होते हैं?
0: खास तौर पे ताशकंद में
1: जी
0: हिंदुस्तानी फिल्मों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया।
1: अच्छा,
0: बहुत अच्छी तरह अपनाया गया।
1: अच्छा,
0: और उसमें एक ये भी वजह है कि हमारे जो स्टार्स हैं यहाँ के,
1: हाँ,
0: वो वहाँ भी बहुत पॉपुलर हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे एक तो राज कपूर साहब
1: जी,
0: और राजीव तो रूस में मतलब उसी तरह से घेर लिए जाते हैं आवाम से जिस तरह से यहाँ
1: यहाँ पे। वाह,
0: और जो नए अदाकार वहां गए हमारे साथ, उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
1: वाह वाह,
0: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहां दिखाई गई, जगह जगह गए हम
1: जी,
0: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
1: अच्छा,
0: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
1: जी,
0: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहां बेच सके।
1: अच्छा,
0: या उनके
1: अच्छा,
0: सौदे किए जा रहे थे या बातचीत
1: अच्छा,
0: चल रही थी।
1: अच्छा,
0: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी कारामद है।
1: बिल्कुल कारामद है, और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी
0: जा,
1: अगर ऐसी ही तरक्की होती रही। गुलजार भाई, एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
0: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
1: हाँ, है ना,
0: और
1: हाँ,
0: दोनों को जांच लेना चाहिए।
1: हाँ, जांच लीजिए।
0: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
1: जी
0: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
1: ठीक,
0: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
1: जी,
0: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
1: ठीक,
0: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगे या एक बार तो ये महसूस होने देंगे कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची,
1: वाह क्या बात कही,
0: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपके कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
1: ठीक,
0: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की

0: उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है
1: जी।
0: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है
1: अच्छा,
0: लेकिन पहुंच कम हुई है।
1: हाँ ठीक है, तो
0: मतलब उतनी
1: तो
0: नहीं हुई
1: हाँ,
0: जितनी होनी चाहिए थी।
1: हाँ,
0: और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद है होगा।
1: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई, आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे जो कदम रखा था गाना लिखा था
0: जी हाँ,
1: और आप कवि हैं शायर हैं
0: जी हाँ।
1: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाएं आपकी आपकी जबानी तो क्या हर्ज जाए।
0: छोरे जी हर्ज तो कुछ नहीं
1: जी,
0: अच्छी बात है,
1: अच्छी बात है ना।
0: अगर उन्हें अच्छी लगे,
1: अरे लगेगी
0: नज्म में आपको सुना देता हूँ और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
1: हाँ पहुंचे रहेगी।
0: वो जो शायर था,
1: अच्छा वो जो शायर था,
0: बहकी बहकी सी बातें करता था, मेरी तरफ ना देखिए। वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें।
1: वाह।
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुलजार भाई आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से। और आप समझो समय अभी हो रहा है तो अब श्रोताओं
0: फिर मिलेंगे फिर
1: मिलेंगे। अच्छा नमस्कार,
2: इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
3: मुसाफिर हूँ यारो।
4: न जाने कितने बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था। और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम

0: विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं सुने विशेष सूचना। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800135 और 7008 पर मिस कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल और इस वक्त हम आप तक पहुंचाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: क्या चुप रहूं
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे, फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: योगेश के बोल थे सलील चौधरी की तर्ज फिल्म का नाम अन्नदाता।
1: जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगी, गुजर जाए दिन दिन।
0: दिन की इस भागदौड़ में 12:38 विविध भारती सुरीला सफर।

मेहरबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। दिन के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देशभर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास

0: के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दाता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं सुनिए विशेष प्रसारण संबंधी सूचना। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315 और 7008 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल और इस वक्त आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा, पलकों की छांव में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छांव में फिल्म और 1958 में आर के नारायण का द गाइड आया था। और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की

तेज गर्मियां इससे पहले देखी थी और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है, ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद SD बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है आई बहार, आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाजा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है, बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है, मिट्टी की पहली सोंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है, केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज़्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज़्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खयाम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध भारती के जरिए बारिश के गाने बज रहे हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ी है और हालत खराब हो गई है। इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है कि इस साल मारतंड अपने प्रचंड रूप में देखा गया है, जनजीवन बेहाल हो गया है। और बहुत सारे श्रोता हैं जो गर्मी से वाकई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। गर्मी तो हर साल लगभग एक सी पड़ती है, ये बात अलग है, हम पिछले साल की गर्मी भूल जाते हैं और सामने जो गर्मी है उससे हम परेशान होने लगते हैं। खंडवा शहर के एक श्रोता कहते हैं कि हम भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन कठिन बना दिया है, दोपहर की तपती सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरा बारिश की राह देखता रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि बस अब तो बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए।

आए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तू पैसा, पहला पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा, जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीले सफर की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं रुपेले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना, और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है, एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नजर आते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर।

नूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें हैं और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारीवारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है, वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते और जब वो चली जाती तो उसे रोकते, बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पता है?

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया। और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया। और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनो के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने, इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं जैसे निस्दिन देख रहे हों, बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नजरों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनकी नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है।

बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किसे के बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती है कि माँ के घर जाती हूँ, वहाँ नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा

एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर बरस गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतजार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफर कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है। यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं।

है, यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना यह है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना यह है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है, शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है, बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती हैं कि बारिश तो अच्छी लगती लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीजें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि।

में जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा

जिम गिरी सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसों भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है, और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई, इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार, जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया

0: में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर्स, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक

0: जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे

0: बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है, FM बैंड 102.9 MHz पर। लीजिए सुनिए विशेष सूचना। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315 और 7008 पर मिस्ड कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.9 MHz पर। अब आप सुनेंगे एक बार फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मनचाहे गीत। मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत
2: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मनचाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाहे गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत, फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: मुंजय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश

पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंद गढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं, समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी।
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रही हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यही विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है।

0: कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
1: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन राजकुमारी जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
0: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: लेते थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: गुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुलदेवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तो चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा।

0: उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
1: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
0: वंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए।

धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो त्रि

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्यश्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: मैं
1: धृतराष्ट्र।
0: ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है। आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या।
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूं।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी।
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत्य यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत्य कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
0: महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गंधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनीय है, असहनीय है ये सत्य। ओह, असहनीय है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: ओह, पगली कहेंगी। क्या तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मन

0: सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जान का सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
0: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
0: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
0: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
0: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तनापुर का भावी शासन?
0: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
0: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
0: कहो सूत।
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? क्या अपमान,

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश।
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक,
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर क्या है?
1: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुने की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं, अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: अमित दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस, टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
2: होया था नस नस में अब ये जग गया, ए, लहू मुलग गया।
1: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी।

0: है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था।
0: आरडी
1: बर्मन साहब का। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट।
1: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पर डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ।
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके इन्हों गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल एज अ कोरियोग्राफर। समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरमाली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरमाली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे

मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया. सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज़ वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म.

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही।
0: किस तरह के? क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले। और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के, जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो

0: यू नो सोचकर या साहिर लुधियानवी के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
1: चित्रलेखा,
0: चित्रलेखा करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था मेरे माइंड की क्या सोच है और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं। देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूं। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूं, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूं और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से, उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी, जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं, तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें, तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हैं, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है
1: वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया,
1: किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में

0: यह एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है,
1: करेक्ट?
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है?
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे, झक झक।

फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फटफट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ।

0: सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फटफट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टेडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं, और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना,
1: अजनबी।
0: हाँ, अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं? मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाते हैं।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, and that's the one thing that I really admire about them.

0: सिर्फ ऋतिक शाहिद ऑल वेरी गुड डांसर्स. रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स. इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर लेकिन उनके फिल्मों में पाकिजा में उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अयर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल यू नो डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना दिखा है वो कल्पना अयर जी ने किया है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विथ रेखा शी टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे. उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जांपल इज आई वुड से इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वाज आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन. साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं मेरी पहचान डांस है तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी. Whereas others didn't know how to dance.
2: Who told

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तट्टी के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: बिंदु पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 MHz पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति केके की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी

0: सच की लहर ज्ञान की झलक आकाशवाणी 890 भारत की जीवंत आवाज।
1: आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाते हैं। धड़कन फिल्म से आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की।

धड़कन इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे, आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रिया

0: नयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अनुशासन की सराहना करना एक बात है और अनुशासन के लिए समर्पित होना एक महान बात है। नमस्कार साथियों, मैं आपका रेडियो दोस्त अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हमारे जीवन में हैंग आउट करना, घूमना बेहद ज़रूरी है, लेकिन किस समय कहाँ जाना है, कब लौटना है, इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जीवन में मस्ती करना जितना ज़रूरी है, उतना ही अनुशासन का पालन करना भी ज़रूरी है। हम चाहे रात में कहीं बाहर जा रहे हैं और लेट हो जाते हैं तो हमारे माता पिता को सबसे ज़्यादा हमारी चिंता होती है। ऐसे में हमारे माता पिता परेशान हो जाते हैं। यदि हम अनुशासन में रहें, समय पे जाएं, समय पे आएं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हम पे भरोसा बना रहता है। इसलिए हैंग आउट करते समय समय का ध्यान ज़रूर रखें।

दोस्तों, देश के सुंदर नज़ारों में आज हम बात कर रहे हैं ऊटी की। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा यह एक बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह अपने खुशनुमा मौसम और चाय के बगानों, टॉय ट्रेन और झीलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गर्मी के मौसम में यहाँ का मौसम बेहद सुहाना रहता है। आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो मार्च से जून के बीच का समय ऊटी आने के लिए बेहद सही रहता है। इस समय जहाँ पूरे देश में भीषण गर्मी होती है, यहाँ का सुहाना मौसम आपको ठंडक का एहसास दिलाता है। आप यहाँ यूनेस्को विश्व धरोहर की टॉय ट्रेन या सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। अपने तमिलनाडु के सफ़र में ऊटी को शामिल करना ना भूलें। अपने जीवन में एक बार ज़रूर इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने जाएँ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मना रहा है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करना, उनके साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तब से हर वर्ष 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम अपनी त्वचा पर गर्व, त्वचा से सभी रंगों का जश्न मनाना है। यह थीम त्वचा के रंगों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने, सभी रंगों के प्रति सम्मान बढ़ाने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की गरिमा, सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती है।

विशेष सूचना 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1-800-315-7008 पर मिस कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई।

बात करते हैं करंट अफेयर्स की। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस 2026 में इतिहास रचते हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय बने। हाल ही में एनएस राजा सुब्रमणि ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को संभाला। हाल ही में भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ी। दोस्तों, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सहायता प्रदान करना है, जिससे वह देश के समग्र विकास में अपना अहम योगदान दे पाए। इसी के तहत तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों के कौशल उन्नयन पर जोर दिया गया है, जिससे अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना व प्रशिक्षण देना शामिल है, जिसके माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्र अपनी आय को बढ़ाने में सहायता प्राप्त करें व अपनी व अपने परिवार को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से और बेहतर बना पाएं।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के ठीक 6 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम से पहले एक विशेष सूचना। दिनांक 14 जून 2026 को रविवार को सुबह 6:15 से 7:35 तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल करें। सफल पंजीकरण के लिए आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत मीरा भजन। मीरा भजन की पहली प्रस्तुति शिल्पा माथुर के स्वर में।

शबनम चतुर्वेदी के स्वर में अभी आपने सुना इस मीरा भजन को। इसके साथ ही श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम यही संपन्न होता है। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:15 में है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 217।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का भाग 217। गायन स्वर रहा श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हमारी आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार है। शाम 7 बजे आप सुनेंगे मीरा चैनल से वसुधा वाणी, एपिसोड 9। आज का विषय है प्लास्टिक क्या है और कैसे ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। इस विषय में जानकारी देंगी डॉक्टर ज्योति सुराणा। 7:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का भाग 13। 7:45 पर आप सुनेंगे मीरा चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत। 8:15 का समय रहेगा किसान भाई बहनों के कार्यक्रम किसान वाणी का। किसान वाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा खरीफ के लिए आदान की व्यवस्था कैसे करें और मृदा स्वास्थ्य कार्ड और बढ़ता उत्पादन के विषय पर जानकारी दी जाएगी। मिट्टी की जांच जरूर कराएं विषय पर भेंट वार्ता, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व डॉक्टर दिनेश चंद्र जाट आपको इस विषय में जानकारी देंगे। लोकगीत और बाजार भाव कार्यक्रम में होंगे। इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:27 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में 6:30 पर श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। उससे कुछ ही पलों में 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
2: जंगल जा रही हूँ दीदी, और कहाँ। इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो, मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
1: पर तू जंगल
2: क्यों जाती है?
1: तेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
2: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं, और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ। अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ेल दूंगी।
1: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच, पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुसीबत में डाल रही है।
2: तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
1: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियाँ बैठती हैं, और वही मक्खियाँ वहाँ से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
2: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
1: ये हुई ना समझदारी वाली बात।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30

0: जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइड्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ, नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहां प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपये सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों

0: के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
1: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजन लाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
0: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे। इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
2: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं को आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के

कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त

0: रक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई में विकास री दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी री ठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माई साफ कोई अर नीति

0: सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता था कांशी शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला माथे आगे बधायो है।
1: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। पहली 8 प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपया सालाना ही जो अब बेधर 2,00,000 रुपयों बत्ती वे की है। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है। जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आ गई प्रदर्शनियां रे जरिए ही केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगों ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए जनतारी समस्यावा मौके निपटार वन सरकार का नियम चलाई जा रही जनतारा भलारी योजनावा जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वन ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो।
2: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपये क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजन लाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
0: पालीरा गुढ़ा एंदला माए लगाई चया ग्रामीण सेवा शिविर माए टीबी री बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवारा काने ऑनलाइन तरीकों दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रजरिये पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवारा न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तहत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवारों री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताईचियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन री शंका है। इन विचे लाडला 24 घंटा माए कई ठोड़ा बिरखा भी सबू बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता रामगढ़ माए बरसियो। श्री गंगानगर चूरू और सीकर माए ओला पड़िया जिनू तापमान माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात सरूफियो बारिश रो दौर रुक रुक कर आज समारे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात भी। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवन री संभावना है। दूजिकानी जैसलमेर माए जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने साखा री कटाई और वाने भिड़ीकरण रा काम माए सावचेती राखन सारू कहो है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आखी दुनिया माए तैयारियां चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशों में भांत भांत रा कार्यक्रम रखा जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र में लोगों ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला में प्रदेश में आई कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इन बीच अहमदाबाद में भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सोनारा 2 तमगा जीतने वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
3: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर फौजी स्टेशन में शिक्षा

0: पर समाज कल्याण उन जुड़िया काम आगे बतावन सारू एक खास कार्यक्रम रखी चियो इन माई फौज और सिविल सोसाइटी बीच मदद बतावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरों ओ दौरों खास मान्यो चाचियो है। इरा पहला दौर माय काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर माय वे काल ही स्लोवाकिया सारू रवाना भेजा वेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वे फ्रांस रा एवियन माय 16-17 जून ने भेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन माय शामिल भेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस माय विवाटेक सम्मेलन माय शिरकत करेला। आखिर माय खास समाचार एक और फेरू सुन ली रहो। इंडियन मिलिट्री अकेडमी री पासिंग आउट परेड माय पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई माय विकास रे दिशा माय खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ गोई और नीतियां माय आगे री सोच उन देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 102.9 MHz पर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए वसुधा वाणी का एपिसोड 9।

0: कुटुंबकम।
1: ये तेरा है ये मेरा है, ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है।
2: वसुधा वाणी की इस कड़ी में हम जानते हैं प्लास्टिक क्या है और कैसे ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर ज्योति सुराणा।
3: कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानव की आवश्यकता ने जन्म दिया प्लास्टिक को। लेकिन प्लास्टिक का निर्माण करते समय मानव ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन प्लास्टिक मानव और पर्यावरण के लिए अभिशाप बन जाएगा। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के संश्लेषित या अर्ध संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। प्लास्टिक पॉलीमर अर्थात बहुलक होते हैं जो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। ये लचीले होते हैं जिसके कारण इन्हें ठोस वस्तुओं में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक सस्ता और सुविधाजनक होने के कारण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। पैकेजिंग निर्माण और रोजमर्रा की कई चीजों में प्लास्टिक बहुत लोकप्रिय बन गया है। लेकिन हम जानते हैं कि प्लास्टिक ना तो सड़ता है ना ही गलता है। जैव अनिम्नीकरणीय होने के कारण

0: कारण इसे प्राकृतिक रूप से सड़ने में 500 से भी अधिक वर्ष का समय लग जाता है। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण को गंभीर और दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा रहा है। इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव बहुत चिंताजनक हैं। जब प्लास्टिक के कचरे को इधर उधर फेंका जाता है तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण अर्थात माइक्रो प्लास्टिक मिट्टी में मिलते हैं और ये मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं। प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक नदियों, तालाबों, झीलों और महासागरों में फेंक दिया जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, साथ ही जल में रहने वाले जीव जंतु इसे भोजन समझकर खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। खाद्य पदार्थों से भरी प्लास्टिक की थैलियों को जब फेंका जाता है तो पशु पक्षी इसे खाद्य पदार्थों के साथ ग्रहण कर लेते हैं और यह थैलियां उनकी आंतों में फंस जाती है, जिससे वे बीमार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। प्लास्टिक की थैलियों, बर्तनों और बोतलों में गर्म खाना या पेय पदार्थ रखने पर प्लास्टिक के रसायन गर्म होकर सूक्ष्म कणों में टूटते हैं और ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिल जाते हैं। एक शोध के अनुसार 15 मिनट के अंदर एक गर्म कप चाय में लगभग 25,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण मिल जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक के कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि आँखों से नहीं दिखते, लेकिन हमारे शरीर में जाकर कई अंगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये पाचन तंत्र को कमजोर कर सकते हैं, इससे हार्मोन असंतुलन और कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो सकती है। ये प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्लास्टिक मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोकेमिकल्स से बनता है। इसके निर्माण, परिवहन और जलाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के कचरे को नष्ट करने के लिए उसे जलाया जाता है, जिससे कई हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पॉलिथीन की थैलियां और प्लास्टिक के कप प्लेट उपयोग के बाद में जब फेंके जाते हैं तो अक्सर ये नालियों और नालों में फंस जाते हैं, जिससे इनमें पानी जाम हो जाता है और बारिश के समय निकासी सही प्रकार से नहीं होने के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। प्लास्टिक मृदा, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए हमें 3 R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। रिड्यूस अर्थात प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रीयूज अर्थात प्लास्टिक की चीज़ों का पुनः उपयोग करें और रीसाइकिल अर्थात प्लास्टिक का पुनः चक्रण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन प्रतिबंधित है, अतः इनका उपयोग नहीं करके इनके स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करें। घरों से निकलने वाले प्लास्टिक के कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय रीसाइक्लिंग के लिए दे देवें। प्लास्टिक के कचरे को जलाएं नहीं, इसे पानी के स्रोतों में नहीं डालें। गर्म खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखें। पेय पदार्थों के लिए डिस्पोजेबल कप के स्थान पर स्टील, कांच, चीनी मिट्टी या मिट्टी के कप का उपयोग कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों से भरी हुई थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकें। इन छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा हम प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं और स्वच्छ पर्यावरण रखने में भागीदार बन सकते हैं।
1: वसुधा वाणी की इस कड़ी में हमने जाना प्लास्टिक क्या है और कैसे ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। जानकारी दे रही थी डॉक्टर ज्योति सुराणा। आज की वसुधा वाणी में इतना ही। आज्ञा दे, नमस्कार।
2: अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधेव कुटुंबकम।
3: ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना वसुधा वाणी का एपिसोड 9 आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से FM बैंड 102.9 MHz पर। लीजिए एक विशेष सूचना सुनिए। दिनांक 14 जून 2026 रविवार को सुबह 6:15 से 7:00

बजकर 35 मिनट तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों की ऑनलाइन भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भागीदार बनने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव सत्र का सीधा लिंक प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप से जुड़ना होगा। विशेष सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने को हैं। श्रोता आप सुनेंगे केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का भाग 13 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी, और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है, उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है, और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है, और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना, और बार बार जीतना, और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम।

0: ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
0: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है, और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसके आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, मैं आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंस मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुँचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुँचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते

0: थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे, तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई

0: भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे, कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उसने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी

0: बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
1: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
0: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
1: कोई एक चीज नहीं है। मैंने कहा ना, फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दुमरों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के नहीं लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
0: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
1: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही

0: जो कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो, क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदान ही, ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
4: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम

0: करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने में।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलेगा,
1: सकते बिल्कुल।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का

0: जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
1: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब

0: थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो जैसा कि आप बता रहे हैं 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.9 MHz पर। शाम के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति वेद शर्मा की आवाज में, फिल्म का नाम है श्रीकांत।

श्रीकांत फिल्म से वेद शर्मा की आवाज में अभी आपने इस गीत को सुना। आई श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत जावेद अली की आवाज में। फिल्म का नाम है प्यार है तो है।

प्यार है तो है इस फिल्म से जावेद अली की आवाज़ में अभी आपने इस गीत को सुना। आई श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं शहजादा फिल्म से। आवाज़ें हैं शाश्वत सिंह और श्यामली खोलगड़े की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति बनारसी बाबू की आवाज़ में।

बनारसी बाबू की आवाज में अभी आपने सुना इस गीत को। आइए श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति सुप्रिया और साथियों की आवाजों में।

सुप्रिया और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना इस गीत को। इस गीत का साथ ही श्रोताओं, लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: किसानवाणी सुनबावाड़ा सगड़ा किसान बहन भैया ने हमारी आनंदी की ओर हूँ घने मानसू राम राम सा।
7: और आनंदी बहन के लारा लारा आपका काना भाई की ओर हूँ भी गणो गणो राम राम सा।
6: राम राम सा काना भाई।
7: राम राम आनंदी बहन।
6: देखो सा काना भाई, किस अबाणु खेती रो टाइम चल रहा है और खरीफ री फसला रो जिको मानसून री जिकी खेती है बीरो टाइम है। और आपा अगर बात करा ई बात री की ई खेती रे बात है जिकी आवश्यक सामग्री है बीरी आपने किसान बहन भैया ने व्यवस्था करनी चाहे और जितनी बढ़िया तैयारी होगा आमदनी भी उतनी बढ़िया होगा।
7: हाँ सर आनंदी बहन, आप बात कर रहे हो खरीफ के लिए जो आदान की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहीं के बात है आपने सबू पहले अपने किसान बहन उन्नत बीज जो है तो किसान भाई और बहना ने अपना कृषि विभाग के द्वारा प्रमाणित किस्मा का जो बीज है वह उपलब्ध कराया जावे है। और इसके बात है अपना राज किसान साथी पोर्टल का माध्यम बीज खरीद और वापे मिलवा वाला बीज पे जो अनुदान है और बीज की उपलब्धता की ऑनलाइन जांच अपना किसान भाई कर सके है।
6: तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की सा करना भाई के बीज जिका है वह उन्नत वेना चाहिए ताकि रोग दोग मुक्त अपनी फसल वह इके

0: सारे ही खाद और उर्वरक वास्ते है। खरीफ की फसल जशान के सोयाबीन है, मक्का है, बाजरा है, आके वाते यूरिया डीएपी और पोटास की जरूरत पड़े और इकी आपूर्ति सुनिश्चित करवा रहे वाते अपना किसान भाई बहन राज किसान साथी पोर्टल पर जान खाद की उपलब्धता की जानकारी ले सके।
1: हाँ सर, और देखो इसके अलावा अपना जो किसान भाई आनंदी बहन वह कृषि यंत्र पे भी अनुदान मिले है, तो अगर ये अपन खरीफ की फसल में ध्यान दे रहा है अपना किसान भाई, तो अपना किसान भाई और बहना ने जो खेती की तैयारी कर रहा है, निशान जुताई कर रहा है, बुवाई या निराई, अना के बात है जो कृषि यंत्र की जरूरत वह, तो वह राज्य सरकार की जो अपने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है इके महीने राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करन कृषि उपकरण की खरीद भी वह कर सके है। इके महीने अपना किसान भाई और बहना ने 40वां लेन पर 50% को अनुदान भी आने प्राप्त वे जावे।
0: और इके लारे एक बहुत जरूरी चीज है फसल बीमा।
1: हाँ सा
0: कि अब देखो बरखा है वह नहीं वह, तो मानसून जी अनिश्चितताओं बचवा रहे लिए अपना किसान भाई बहना ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत अपनी फसल रो बीमो जरूर करा लेना चाहिए।
1: हाँ सा
0: क्योंकि फसल बीमारी और जी की मिलबा वाला जी का लाभ है नी वह बहुत बढ़िया वे है, और ई रो जी को प्रीमियम है बहुत ही रियायती दर पर सहकारी बैंकर है मैंने या ई मित्र रे मैंने जार वह भरी सके।
1: हाँ सर, तो अपना किसान भाई और बहन अपना खरीफ के बाद जो है आदान की व्यवस्था कर लेनी है छावे, जिको अपनी उपज भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगा सर।
0: और देखो काना भाई उपज बढ़ा रहे हैं अपना बात करी है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड इके बातें बहुत ही जरूरी है।
1: हाँ।
0: और यह भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी है, जो भी किसान है बांका खेता ने मिट्टी री सेहत री जानकारी जी की अभी बाके बातें बहुत जरूरी है जिन्हों उत्पादन रे मैंने बहुत ही बम्पर वृद्धि हुए।
1: हाँ सर, और यो कार्ड जो है अपना किसान बहन है मिट्टी में जितना भी मौजूद 12 तत्व है जिसान नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास जिंक आयरन और मिट्टी को जो पीएच स्तर की है वह भी इनमें सटीक जानकारी आपने मिल सके ऐसा।
0: बिल्कुल मिल सके ऐसा। और देखो इके लारे लारे जी की रिपोर्ट रे आधार पर जी की चौकी फसल रे लिए मिट्टी रे मैंने कितनी खाद और कितो उर्वरक री जरूरत है जिके रे कारण खर्चो भी कम वे और मुनाफो ज्यादा वे इरी भी वो चीज सिफारिश करे।
1: हाँ सर, और देखो आनंदी बहन अपने किसान भाई के बात है हर 2 साल के महीने किसान है तो सरकार जो है वो सरकार किसाना ने मुफ्त जो मिट्टी परीक्षण है वो इसकी सुविधा देवे है ताकि वे अपने खेत की जमीन में उर्वरकता ने बनाए रख सके है।
0: और इनू भी अगर कोई अपना किसान बहन भाई अगर बत्ती जानकारी चाहे तो इसकी आधिकारिक जी की वेबसाइट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल रे माध्यमों प्राप्त कर ही सके।
1: हाँ सा,
0: तो काना भाई यह बात तो हुई आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे। अब कार्यक्रम में मैंने सुना एक प्यारो सो लोकगीत।
1: हाँ सा।

0: त्रिलोक हीरो नाथ, देखो आप आ चुके हो लोकगीत आपा किसान भाई और बेना हुण्यो है। और अब आनंदी बेना आप कई विशेष सूचना लाया हो आज?
1: बिल्कुल साकाना भाई, एक कार्यक्रम में विशेष सूचना लेना आया हाँ। 14 जून 2026 रविवार ने सुबह 6:15 नू लेर 7:35 तई आयुष मंत्रालय भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र रो आयोजन करने जा रियो है, जिके रो उद्देश्य है एक सागे सब ज्यादा लोगों की ऑनलाइन भागीदारी रो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनानो है।
0: हाँ सर, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनावा में जो भागीदारी आपने बनेगा वी में आपने व्यक्तिगत रूप पंजीकृत रहना जरूरी है। और इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 यहाँ पे मिस्ड कॉल कारण आपने पंजीकरण भेजाएगा। इसके बाद में आपने किसान भाई ने व्हाट्सअप के माध्यम लाइव सत्र को लिंक सीधो प्राप्त वेगा। और प्रतिभागी प्रत्येक ने अपने स्वयं का व्यक्तिगत उपकरण मोबाइल या लैपटॉप जुड़ना सुनिश्चित करना होगा।
1: तो सा या तो ये सूचना और कार्यक्रम में मैंने अब लेना यहाँ जानकारी रो विषय है भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। और इसकी जानकारी दे रहा है डॉक्टर दिनेश चंद्र जाट और अना

0: तो बातचीत कर रहा है सीताराम महावर। तो मिल बैठे सुना यह जानकारी।
1: साथियों, इस समय अपने साथ हैं दिनेश चंद्र जाट, आप सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं और आज इनसे जानकारी लेते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। दिनेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: दिनेश जी, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि आजकल बात की जाती है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की, यह हमारे खेत की मिट्टी में होता है, इसका क्यों इतना महत्व बढ़ गया है?
2: आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि CN अनुपात जो है वो बेसिकली फसल के अपघटन के लिए जरूरी होता है। सी का मतलब होता है कार्बन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। किसान भाई किसी भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ जब अपन खेत में डालते हैं तो वो सड़ता है। सड़ने को अपन अपनी टेक्निकल भाषा के अंदर अपघटन बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन करने के लिए मिट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से अपने जो मित्र है, जिनमें अपन सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो वो जो भी किसान अपने खेत में जिस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ डालता है तो उसको सड़ाने का काम और विघटन करने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। अब जब CN रेशियो की अपन बात करते हैं तो फसलों के जो अवशेष या जो भी कार्बनिक पदार्थ अपन डालते हैं उनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग अनुपात होता है। अब जो सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं वो सूक्ष्म जीव भी जब उनका अपघटन करते हैं पदार्थों का तो उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए वो क्या करते हैं सूक्ष्म जीव की कार्बन उनको चाहिए होता है ऊर्जा के लिए, और अपने विकास के लिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जो कार्बनिक पदार्थ हैं जब उनका वो अपघटन करेंगे, अगर उनको प्रॉपर मात्रा के अंदर उचित मात्रा में अगर कार्बन मिलेगा जिससे वो अपनी खुद का वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, और उसके साथ ही जब उसका अपघटन होगा तो उसके लिए ये CN रेशियो अपन मान सकते हैं महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि कोई भी सूक्ष्म जीवाणु है, अपन ने खेत के अंदर ऐसा कार्बनिक पदार्थ डाला है जिसका CN अनुपात बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर, CN अनुपात को अपन 100 ग्राम मात्रा के हिसाब से चलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ह्यूमस का अपन उदाहरण ले लेते हैं तो ह्यूमस का जो CN अनुपात होता है वो 10:1 होता है, मतलब उसके 10 भाग तो है होते हैं कार्बन के, एक भाग होता है नाइट्रोजन का। मतलब 100 ग्राम के अंदर अपन बात करेंगे तो 90 ग्राम तो आपका हो गया कार्बन और 10 ग्राम आपका हो गया नाइट्रोजन। तो ये जब रेशियो कम मात्रा के अंदर होगा तो जल्दी अपघटन होगा और पौधों को जो है जल्दी सूक्ष्म पोषक तत्व और अन्य पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलेंगे।
1: दिनेश जी, यूं कह सकते हैं कि मिट्टी को जीवन प्रदान करता है CN रेशियो, यह कम क्यों हो जाता है और ज्यादा करने के लिए क्या करना होता है?
2: देखिए, जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये CN अनुपात जो है वो प्राकृतिक रूप से ही वो विद्यमान होता है फसल अवशेषों के अंदर। अगर अपन चारा वर्गीय फसलों की बात करेंगे तो जिसमें जैसे पराली हो गई है, चावल की हो गई है, गेहूं का भूसा हो गया है, तो ये घास कुल की फसलें कहलाती है जिसमें जो हो गया है, इन फसलों के अवशेषों के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात दलहनी फसलों की तुलना में ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने का प्रभाव क्या होता है कि जब इसकी अपघटन की प्रक्रिया होगी तो अपघटन की प्रक्रिया के लिए सूक्ष्म जीव काम करेंगे और वो सूक्ष्म जीव अपनी खुद के विकास के लिए, अपनी वृद्धि के लिए या ऊर्जा के लिए भी कार्बन की कुछ मात्रा लेते हैं और कुछ नाइट्रोजन की मात्रा लेते हैं। तो अगर अपन खेत के अंदर फसल अवशेष ऐसे डाल रहे हैं जिनका CN अनुपात बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है तो सूक्ष्म जीव को ऊर्जा के लिए कार्बन तो उनसे मिल जाएगा परंतु उनको प्रोटीन उपलब्ध नहीं होगा उनके विकास करने के लिए, तो वो प्रोटीन कहाँ से उठाएगा? मिट्टी से। तो ऐसी फसल अवशेष जब अपन खेत में डालेंगे जिनका CN अनुपात बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है तो कार्बन तो वहां से वो सूक्ष्म जीव ले लेंगे और नाइट्रोजन मिट्टी से उठा लेंगे और फिर अपघटन की प्रक्रिया करेंगे। तो इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से अपने को नेक्स्ट फसल पे उस खेत में देखने को मिलेगा कि जो फसल अपन लगाएंगे वो किसी अन्य कारण से नहीं, केवल और केवल CN अनुपात के बिगड़ने से वो पीली पड़ जाएगी और काश्तकार इस चीज को ऐसा समझता है कि हमारी फसल को किसी और प्रकार का रोग लग गया है।
1: हमारा किसान भाई कैसे पता लगा सकता है कि उसकी मिट्टी में, उसके खेत में CN का अनुपात सही है या नहीं?
2: इसके लिए अपन मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा अपन जो काश्तकार लेवल पर एक प्रक्रिया अपना सकते हैं कि बहुत सी बार अपन साल दर साल एक ही प्रकार की एक ही कुल की फसलें लगाते हैं। जैसे मान लीजिए घास कुल की अगर अपन फसल लगा रहे हैं जिसमें अपनी मक्का हो गई है, गेहूं हो गया है, जो हो गया है, गन्ना हो गया, तो अब इनसे क्या होगा कि खेत के अंदर कार्बन की मात्रा तो बढ़ती जाएगी परंतु नाइट्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी। तो किसान भाइयों को अपने लेवल पर क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए जिसमें एक सीजन के अंदर घास कुल की फसल लगाए, दूसरे सीजन के अंदर दलहनी फसल लगाए। दलहनी फसलों का जो सीएन अनुपात है वो 20:1 से कम होता है, जिसकी वजह से अपन यूं कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों को एक उचित मात्रा के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन उपलब्ध हो जाती है, जिससे

0: वो उनका अपघटन करते हैं तो कुछ मात्रा नाइट्रोजन की अपने लिए रख लेते हैं और बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वाली फसल को जो है उसको उचित मात्रा में पोषक मिल जाता है। इसका फायदा ये हो सकता है कि काश्तकार यूरिया और डीएपी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आधी रह सकती है अगर काश्तकार केवल सीएन अनुपात को फसल चक्र अपना करके बैलेंस कर ले। तो
1: हमारा किसान भाई जब मिट्टी की जांच करवाता है कैसे पता चल जाता है कि यह अनुपात सही है या नहीं?
0: जब हम लोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके अंदर आपके जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होगी, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब है कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ के अंदर चेंज करना, और बेसिकली जो पौधे हैं वो अकार्बनिक रूप में ही लेते हैं। तो सीएन रेशियो के लिए जो बेस्ट सीएन रेशियो है मिट्टी के लिए सूक्ष्म जीवों के लिए वो 20:1 से जब कम होगा तो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और 20:1 से जो प्रक्रिया अपना सकता है वो फसल चक्र को अपना करके कर सकता है। फसल चक्र में एक सीजन में आपकी ग्रास कुल की फसल ले ली, एक सीजन में उसने लेग्यूमिनस की फसल ले ली। अब सेकंड चीज और है कि काश्तकार जो आजकल पराली को जो जलाने लग गए हैं, जलाने के बहुत सारे नुकसान हैं। फसल जब जलती है तो उसमें जो खेत के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं वो भी मर जाते हैं, और अगर अपन उस प्रकार की पराली को जलाने की बजाय अपन उसको सड़ाने का प्रयास करें तो सड़ाने के लिए अपन एक प्रक्रिया अपना सकते हैं, क्योंकि पराली का जो सीएन अनुपात है वो 80:1 होता है, होता बहुत ज्यादा मात्रा में। सूक्ष्म जीवों को बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा प्रक्रिया होती है, तब जाकर के चावल की पराली और गेहूं का भूसा और ये सड़ते हैं। इसके लिए काश्तकार अपने लेवल पर कर सकता है कि जब भी खेत में पराली वो डाले उसको सड़ाने की प्रक्रिया करे, तो अपन कुछ मात्रा के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 किलो यूरिया डाल करके उसको सड़ा सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट फसल अपन उस खेत में लगाएंगे तो वो जो खाद है वो नाइट्रोजन जो है उनको मिल जाएगी, और वहां पे जो अपने को यूरिया और डीएपी देना है वो अपनी मात्रा आधी हो जाएगी। अब एक उसका डिमेरिट अपन को लग सकता है कि आप बता रहे हो कि भाई पराली को जलाने के लिए यूरिया अपन को बाहर से देना है, तो वो जो यूरिया की मात्रा अपन दे रहे हैं वो सूक्ष्म जीवों के लिए दे रहे हैं, उनके विकास के लिए दे रहे हैं, कि सूक्ष्म जीव मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं लेकर के जो यूरिया अपन दे रहे हैं उससे ले ले और अपना जो फसल की पराली है उसको वो सड़ा दे, ताकि नेक्स्ट फसल अपन लगाएं तो उसमें वो प्रॉपर मात्रा में अपने को पोषक तत्व मिल जाए।
1: आजकल किसान भाई जैविक खेती पर प्राकृतिक खेती पर जोर देने लगा है, यदि ऐसा हमारा किसान भाई करता है तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है मिट्टी पर?
0: काश्तकार केवल सीएन रेशियो को मेंटेन करके अपनी जो उर्वरक की जो खपत है उसको आधा कर सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपन को क्रॉप रोटेशन अपनाना। अगर काश्तकार केवल गेहूं का तो वो मल्चिंग का काम भी करती है, लंबे समय तक सड़ती नहीं है, परंतु दलहनी फसलों की अपन बात करते हैं तो ये कुछ समय के अंदर ही सड़ जाती है, तो अपने खेत की ऊपरी जो है मल्चिंग का काम नहीं करती है। जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने की वजह से जब वो पानी बह करके निकलता है तो कुछ मात्रा के अंदर नाइट्रोजन बह करके चली जाती है। काश्तकार को बैलेंस बनाते हुए कि एक साल में अपन ने अनाज वाली फसल लगाई, एक साल में अपन ने दलहनी फसल लगाई उसी खेत में, तो अपन सीएन रेशियो को मेंटेन करते हुए रासायनिक खादों की ऊपर की जो निर्भरता है उसको कम कर सकते।
1: दिनेश जी, हमारा किसान भाई वर्मी कंपोस्ट काम में लेता है, गोबर की खाद काम में लेता है, कई किसान भाई हरी खाद बना लेता है खेत में, इसका मिट्टी पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? क्या सीएन रेशियो इससे प्रभावित होगा?
0: बिल्कुल साहब, जैसे हरी खाद में जैसे ढेंचा की फसल लेते हैं तो ढेंचा की फसल का जो सीएन अनुपात है वो 15:1 से लेकर के 20:1 के मध्य होता है, और जो सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन के दो या उनके लिए सबसे प्रिय भोजन इसको अपन मान सकते हैं। इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट भी जो है सूक्ष्म जीवों के लिए प्रिय होता है, देसी खाद भी प्रिय होती है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि इनका जो सीएन अनुपात होता है वो 20:1 से कम होता है, और जब 20:1 से कम हो रहा है तो सूक्ष्म जीव इसको खाने के लिए या बहुत अच्छी मात्रा के अंदर खाद बनाने के लिए जब इसको अपघटन करेगा तो अपघटन करने पर जो है खेत के अंदर नाइट्रोजन कार्बन और अन्य जो पोषक तत्वों की फसल को आवश्यकता होती है वो सब अच्छी मात्रा के अंदर खेत के अंदर उपस्थित रहेंगे।
1: दिनेश जी, हमारा किसान भाई कीड़े बीमारी की रोकथाम के लिए, पौधों की बढ़वार के लिए केमिकल फर्टिलाइजर रसायन का उपयोग करता है जिससे कीड़े मर जाते हैं और बीमारियां फसलों को नहीं हो पाती, केमिकल उपयोग करने से खेती में क्या सूक्ष्म जीवों पर कोई प्रभाव पड़ता है?
0: देखो, हर एक चीज की जो अति होती है वो खराब होती है। अगर अपन ऑप्टिमम लेवल के अंदर किसी भी प्रकार से रसायन का प्रयोग करते हैं तो वो फायदेमंद हो सकता है, परंतु काश्तकार इस चीज का ध्यान नहीं रखता है, और जिससे क्या होता है कि अपन जिस पर्टिकुलर बीमारी के लिए या जिस कीट के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके अंदर जो है एक प्रकार की जो प्रतिरोधकता आ जाती है कि भाई काश्तकार को जो दवाई छिड़कना है वो मान लीजिए 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से छिड़कना है। तो और काश्तकार ने अगर वहाँ पे 20 ml 30 ml अगर प्रति टंकी के हिसाब से छिड़का तो वो कुछ समय के लिए तो फायदेमंद हो जाएगा, परंतु वहाँ पर

0: जो जिस प्रकार की जो प्रजाति है कीटों की, उनके अंदर उस पर्टिकुलर रसायन के प्रति जो है टॉलरेंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि धीरे धीरे उस पर्टिकुलर रसायन का उन कीड़ों के ऊपर प्रभाव कम हो जाता है और कीड़े मरते नहीं है। तो रसायनों का एक उचित मात्रा के अंदर आप लोग अगर उपयोग करते हैं किसान भाई, तो उसका फायदा मिल सकता है। अगर एक्सेस मात्रा के अंदर डालोगे तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
1: लंबे समय तक अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारे खेत में CN का अनुपात सही होना आवश्यक है, और ये हम फसल चक्र अपनाकर रख सकते हैं।
0: बिल्कुल साहब, CN अनुपात को काश्तकार केवल और केवल फसल चक्र है उसको अपनाते हुए ही मेंटेन कर सकता है। इसका दूसरा उपाय मेरे ध्यान में तो है नहीं, क्योंकि इसमें फसल चक्र अगर प्रॉपर तरीके से चलेगा तो ही आपके जो है, अगर केवल और केवल ल्यूमिनेसी फसल लगा दी, दलहनी फसलें, तब भी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा, और केवल अपने ग्रास कुल की फसलें लगा दी तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वहां उस खेत के अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन खेत में उपस्थित है उसको सूक्ष्म जीव ले लेंगे। इसलिए अपन को फसल चक्र अपनाना चाहिए कि अब काश्तकार मान लीजिए, जैसे छोटे काश्तकार है उनके पास छोटी जोत है, तो वो एक साल उसके अंदर घास कुल की फसल लगाए और एक साल दलहनी। अब जब बड़े काश्तकार की अपन बात करते हैं, जैसे 20 बीघा 30 बीघा एक ही प्लॉट जमीन का है, तो उनको एक साथ वो काम नहीं करना है कि भाई एक साथ वो लगा दी पूरे खेत में। उनको इस प्रकार से CN रेशियो मेंटेन करने के लिए उनको टुकड़ों में अपनी खेत को डिवाइड कर देना है, कि हर साल अपने को एक टुकड़े के अंदर, 2 बीघे का टुकड़ा है तो उसके अंदर एक साल अनाज वाली लगा दी, दूसरे साल उसके अंदर दलहनी लगा दी, फिर दूसरे टुकड़े के अंदर। तो इस प्रकार से अल्टरनेट अपन दलहनी फसल और अनाज वाली जो ग्रास कुल की फसलें अगर लगाएंगे तो CN रेशियो अपने आप प्राकृतिक रूप से मेंटेन हो जाएगा, और इसका फायदा काश्तकार को नेक्स्ट फसल में देखने को मिलेगा। काश्तकार इस चीज का ध्यान नहीं रखता है, इसीलिए वो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग कर रहा है, और अगर इस केवल CN रेशियो को अगर वो मेंटेन कर लेता है तो जो उर्वरकों की जो खपत है वो आधी रह जाएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ।
1: दिनेश जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद, राम राम साहब।
0: राम राम।
2: भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात रे महत्व रे बारे में दिनेश चंद्र जी जाट आपने लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी दी थी सा, और आशा करा अपना किसान भाई को जरूर लाभ लेगा।
3: हाँ सर नंदी बहन, देखो अपना किसान भाई और बहना ने बतावा का बाणू खेती को टाइम चल रहा है, तो मिट्टी की जाँच अपना किसान भाई जरूर करा लेवे। और अपनी कृषि योग्य जो भूमि है वीमें उत्पादकता एवं किसान भाई बढ़ेगा, और सही पोषक तत्व की जो मात्रा है वह सुनिश्चित करवा और इसकी लागत ने कम करवा के लिए अपने मिट्टी की जांच कराना घणो जरूरी है।
2: बिल्कुल साकाना भाई, देखो बिना जांच खाद डालवो बिस्तर बियानी है, जहाँ के बिना रिपोर्ट इलाज करवानो, जिसान की आप अगर मांदा वे जावा तो डॉक्टर करने जावा, और सब पहले वो जांच ही लिखे। और बियानी आपने अपनी मिट्टी की कमी या कमजोरी की जानकारी अगर वेगा यदि आप भी को सही निदान कर पावांगा।
3: हाँ साहब, इसके अलावा मिट्टी की जांच में अपने मिट्टी में जो पोषक तत्व या और पीएच की को मान है मिट्टी को, इमेशन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म जो पोषक तत्व है अना की जो आपने सटीक जानकारी अपने किसान भाई ने मिल सके है।
2: बिल्कुल, और इर बात है सही तरीके नमूनों लेनो मिट्टी रो, क्वारंटाइन विधि हूँ, और लगभग 500 ग्राम मिट्टी साफ थैली रे मैं आप नाम पतो खसरा नंबर और बोई जावा वाली फसल के आप किसी फसल बोवा वाला इरो नाम जरूर लिखना चाहे, और आपरे मिट्टी रे नमूने ने आपरे नजदीकी कृषि विभाग रे कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य सरकारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जमा कराई देनी आप कराई सका।
3: हाँ
2: और देखो पहली निदान पछ उपचार।
3: हाँ सर,
2: तो मिट्टी की जाँच करानी बहुत जरूरी है।
3: अबे देखो आप आनंदी बेन बात करा मौसम की, तो आज को अधिकतम तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, आद्रता रही है 36% की, और हवा की रफ्तार है वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा।
2: और आबा वाले 24 घंटा के बारे में पूर्वानुमान है, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, आद्रता 47%, और हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दरों रहवा की संभावना है। तो सा काना भाई कार्यक्रम रो टाइम वेरियो है पूरो, तो देव इजाजत आनंदी बहन ने
3: और काना भाई की ओर
2: माँ के आड़ी घना घना
3: राम राम, राम सा।
4: कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: खेत

अभी किसान भाई बहन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे समाचार संध्या। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में सुनवाए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।

0: लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को

0: फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के

0: leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
2: बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका
3: संगीत अब क्या होगा इस फिल्म से, ये गीत सुनिए मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ।

आइए आपको सुनवाते हैं आरंभ फिल्म का गाना, शकील अहमद का लिखा हुआ। संगीत आनंद शंकर का है, गायक स्वर मुकेश और आरती मुखर्जी के।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गाना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पेशे प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई पर।

वसंत देसाई का जन्म महाराष्ट्र के जिला सावंतवाड़ी के गांव सोनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहां वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के

इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार चित्रपति शांताराम राजाराम वनकुदुरे, जी हां वी शांताराम जी से, जो प्रभात फिल्म कंपनी के सह संस्थापक थे।

वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने लगे थे। ये बात सन 1930 के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म खूनी खंजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक फिल्म थी दोस्तों। वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी, और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने के साथ।

वसंत देसाई 1936 के आसपास मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंध्रयांची शाला, जो कि एसबी वर्तक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेबीएच वाडिया की फिल्म शोभा में, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई, राजकमल स्टूडियोज। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन थे दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियमवध की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त हुई। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा लिए होता था और सहज मधुरता का रसीलापन लिए होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पैनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत सरिता में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त किया था। आइए सुनते हैं इसी गाने को।

वसंत देसाई का हर गाना अपनी मिसाल आप है। 1950 में आई फिल्म दहेज का ये गाना सुनिए। जयश्री ने ये गाना गाया था, जो कानों में शहद घोलता है।

दोस्तों, वसंत देसाई ने मराठी फिल्मों का भी संगीत निर्देशन किया है। कुल 20 फिल्में उन्होंने की हैं। हर फिल्म का संगीत सुमधुर बन पड़ा है।

उनकी कुछ बहुचर्चित मराठी फिल्में हैं श्यामची आई, मोलकरण, स्वयंवर झाले सीतेचे, लक्ष्मण रेखा, तूच माझी राणी, कांचन गंगा, छोटा जवान, और इसके अलावा संगीत नाटकों को भी उन्होंने संगीत दिया है। आंधळ्यांची शाळा, छाया और देव दीनाघरी धावला।

दोस्तों, किसी संगीत की महफिल में संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का साज थम गया। दिन था 22 दिसंबर सन 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रास्ते भी उजाले से भरे हुए साफ दिखाई देंगे।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने संगीतकार वसंत देसाई पर। शोध स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:52 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान कीजिए।